ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो पीआरओ रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली

पाती ना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना बेटा यमला पगला दीवाना हो रब

0: वारीवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबा लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, ओहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारियां वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है, ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वह क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बनके, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकती, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा, ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
1: ਹਟਾ ਦੋ ਗਰਮ ਮੁੱਖ।

हुई सी। सो एस वेले 7:12 मिनट हो गए जी, 23 सेकंड हो गया न्यूयॉर्क का टाइम आ, तो 23:31 तो लाइव प्रोग्राम चल रहा जी। तो दोस्तों गुरदास मान साहब बारे थोड़ी जी गल कर लिए, उन्हों का शो जेड़े अजकल कैनेडा दे विच हो रहा है, बड़ी दुनिया धूमधाम नाल लोग पहुंच रहे हैं। जो कुछ पिछली बार होया सी लगदा कि साडे लोग जेड़े आ ओह गल नूं भुल गए। वैसे एडी वड्डी गल हो गई सी जां छोटी गल हो गई सी, उहदा लोकां ने विरोध तो बहुत कीता। किसान अंदोलन दे जदों चल रहा सी उदों भी गुरदास मान साहब उत्थे पहुंचे सी, लोकां दे विच गुस्सा सी, गिले सी, पर उन्हें कई बार माफी भी मंगी, पर लोगों ने इदा लगता कि उन्होंने माफ कर दिता। सो अच्छी गल है जी, जो बंदा अपनी गलती का एहसास हो जाता कर लेंगे। सिंगर को गल्ला कई बार स्टेज से खलो के निकल जाए। सो ठीक है, जो कुछ होया बहुत अच्छे शो चल रहे, बड़ी दुनिया बहुत लोग जेड़े उन्होंने प्रोग्रामा पहुंच रहे हैं, इस गल की भी खुशी है। चलो अगला गाना सुन रहे, काला डोरी है।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खत पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह ठक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे आली है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधु दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीत दे नाल इस चालू करांगे जी

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज परवाज रेडियो मैं हां तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक।

0: गीत और सुन दे जी सिंधु शिंदा
1: साहब। भाई बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले भाई, आज तो नजारा आ गया भाई।
2: देखो ना जी, इतनी सोनी जन लेके आया।
1: लो भाई, अमली का ब्याह भी हो गया। वो ताली जेतो वाले लाखों शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई, जिंदा बहुत पैदा पैदा हो जाए।
2: मालको ला दें, हम पैसे नहीं लेने। सोचो
1: भाई, वाह वाह वाह।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-3

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3059 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल

0: Security.
1: प्रवास रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM प्रवास रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त

नमस्ते अदाब दोस्तों, तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। न्यूयॉर्क तो मैं हां ताडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खख, प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी। सो अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी, कुछ वधिया वधिया अज डिफरेंट गाने होणगे जी। मैडम नूर जहां होएगी ते रलमे मिलमे गाने होणगे ते उहनां नूं आपां सुणदे

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो पीआर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योरसेल्फ व्हाट यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे.

साहब पैगाम देने वाला। दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा। वाह वाह।

यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: in a deleted उन्हें कटी गई है अपनी तो जाओ कांटेक्ट कर रहे हो उनसे उम्र बबी जी लाइन कटी गई थी
1: हाँ जी
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है मैं कहूँ तुसी ओ मैं सोच रहा थी शायद कहीं और ना कांटेक्ट करवा रहे हो जहां तक गोल प्ले के नल लाइन कटी गई है
1: हेलो
0: जी मैं तो आधा इंतजार कर रहा हूं कि तुम कोई गलबात करोगे लाइन फेर कटी गई है कोई डिस्टर्बेंस हो रही है उन्होंने मैं एक बार कॉल उन्होंने फेर कर देना हो जाता कोई टेक्निकल अगा पिछा हो जाता मेरे ख्याल दे विच कुछ इस तरह बबी जी लाइन फेर कटी गई फेर कटी गई है लाइन वेरी गुड समझ नहीं आ रही या चक्कर हो की रहा दोस्तों बार बार लाइन कटी जा रही है उन्होंने दी
1: हेलो
0: बब्बी जी बार बार कटी जा रही है लाइन तो
1: हेलो
0: हाँ जी हाँ जी
1: हेलो
0: मेरी आवाज सुन रही है तो नू नहीं सुन रही हूँ ता ही अलवेलो कर रहे हो ताड़ी आवाज मैंने सुन रही है लेकिन मेरी आवाज तुहाडे तक क्यों नहीं पहुंच रही इधरों सब कुछ ठीक है तुहाडा ही कोई सिस्टम जेड़ा है
1: हेलो
0: हेलो हेलो करन दा नहीं तुसी कोई चेक करो अपना कुछ इधरों सब कुछ फर्स्ट क्लास चलन दे

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होने दिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना ओ मुकेश पगलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप
2: सोच
0: तो मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

मेले में अकेले फिरी बाजार सर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं जाती गमला पगला दीवाना।

पसीना छोटी सी उम्र में वो जान तो लगा सीना प्रेम दरोग पुराना पुराना पुराना है जत यमला पगला दीवाना हो रप्पा।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आस जिनों दिलां ते दस्तक देण वाला तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला पाखदे मसले लियाउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला कईयां मथियां ते तीवड़ियां लबां ते हासे लियाउण वाला तुहाडी सोच च भड़सू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

0: वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी ओ जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नूं ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नूं सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओए क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, मनुख नूं बंदा होण दा क्यों गुरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तों दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, जिउंदिआं दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी जिउंदिआं दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणियां क्यों नशे विच चूर हुंदा, ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
1: ਹਟਾ ਦੋ ਗਰਮੁਖੜਾ।

0: জদ আকবর বলে বারিশ কেন উঠাই।
1: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल लावांगा, आप दियां दियां कालां लावांगा। मैं मुकद्दर दा मोहताज नहीं हां,

बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: gare gare
1: gare gare gare
0: gare gare
1: gare gare gare
0: gare gare
1: gare
0: gare gare gare
1: gare gare gare gare
0: एक चतुर नार हम छोड़ दे एक चतुर नार हम पकड़ कर रख दे मेरे मन के द्वार ये घुसत जा।

एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मर

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत स्रोतियो ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजणों दिलां ते दस्तक देण वाला तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला भाखदे मसले लिआउण वाला पंजाब दी सैर करवाउण वाला हक सच दे ढोल वजाउण वाला।

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत हुई सी। लोग घोलां नूं जबर नाल दबाउणा ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वो बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा पहाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देन। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तों बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तों प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना कीती ते ना ही मौत तों डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तों ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसानां किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटि दा कवि, लोक युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युक्त ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों एक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तो उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी। इह तिन्ने एक दूजे दे आपस विच वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह होणा ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसी उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओ कौन है कौन नहीं। जदों तुसी टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओ लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके। हांजी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है, भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।